0: सच कह जे होंदा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच्चे
2: मिट्टी चुगदी फसल सच्चे
1: खुरो दी पानी सच्चे सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

बापू, प्यो, डैडी, पापा, बड़े नाम ने इस शख्स दे। अजकल समा थोड़ा जिहा मॉडर्न हो गया, पर कोई समा सी कि असी अपने बुजुर्गों नूं, अपने बापू नूं प्यार भी नहीं जिता सकते सी। सानूं जिताउणा आउंदा नहीं सी, सानूं बापू नूं कहना नहीं आउंदा सी कि बापू यार मैनूं बहुत चंगा लगदा तूं, बहुत मुहब्बत करदा मैं तैनूं। इदां ही बापू मेहनत करदा करदा मिट्टी नाल मिट्टी हुंदा हुंदा मिट्टी हो गया। एक दिन सिर्फ यादां छड्ड गया पिछे।

जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग जी. हैप्पी फ्राइडे. शुक्र आज शुक्रवार है. सो इस शुक्रवार की इस सवेर के आप सब का निघा स्वागत अपने प्रोग्राम सजरी सवेर विद शम्मी पठल. 6 बजे तक साडा साथ रहेगा, गीत संगीत रहेगा, कुछ क फरमैशा पहुंच चुकिया ने. सो बाकी तुसी साडे नाल गल्लां कर सकते हो, अपने दिल दे विचार सांझे कर सकते हो, कुछ लिखते हो, कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ गुनगुनाना चाहते हो. क्या बात है, अज का दिन है जिहड़ा खास इसे करके तुहाडे वास्ते रख्या हुंदा. कई बार कोई गीत है जिहड़ा उहदी तुसी सुन के ना सवेरे सवेरे रूह खुश हो जाती है. कोई इहो जे गीत की फरमैश है करनी चाहते हो, मोर दैन वेलकम. बड़ा मजा आता कई बार इहो जी फरमैश आ जाती है, कोई इहोजा गीत सवेरे सवेरे इहोजी मौसीकी सुनन नूं मिलदी है भी दिल बागो बाग हो जाता, रूह खिल जाती है, खुश हो जाते हैं, गद गद हो जाता. सो इहोजा कोई गीत है उहदी फरमैश करना चाहते हो, कुछ क जिहड़े गीत मेरे तक जिहड़े आए हैं फरमैशी वह मैं क्यू अप कर ले ने, ते ओ मैं एक एक करके जिहड़े प्ले करांगा. जे कोई दोगाना कोई ड्यूट सोंग होवे, कोई इदां दा अज लग जावे जिहनूं तुहानूं लगदा भी मजा आजूगा, सो मजा कल्ला आपां नूं नहीं सारिआं नूं आजूगा वह गाना सुन के, तां जरूर है जिहड़ा इहो जिहे गीत की फरमैश है जरूर पहुँचा दिओ. कई बार दिमाग च नहीं आता हुंदा कई बार ना एकदम गीत, सो पर तुसी है जिहड़ा इहोजा गीत है जिहड़ा याद दिला दिंदे हो भी भाई आह गाना सुनो तुसी, ते जिन्ने भी साडे सुनदे पए है ओह खुश जाणगे, खुश हो जाणगे, खिल जाणगे. सो इहोजा कोई गीत संगीत है जिहड़ा कोई ड्यूट सोंग बारे है जिहड़ी कोई मैनूं फीडबैक दिओ, कोई ना कोई इहोजा जिहड़ा ड्यूट सोंग लाया जावे

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर दे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुने करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी

0: ओवरऑल थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: वैल्यू जे तुसी वधाउणी है या एक्स्ट्रा इनकम लई लीगल बेसमेंट तैयार करवानी होवे या अपने घर नूं नवीं अते खूबसूरत लुक देनी है तां संपर्क करो नानक रेनोवेशन दे नाल। लीगल बेसमेंट, बेसमेंट फिनिशिंग, कॉन्क्रीट ड्राइववे, पैटियो या कोई भी रेनोवेशन दा काम नानक रेनोवेशन। एक्सपीरियंस टीम समय सिर काम करदे ने, बहुत ही रीजनेबल रेट। फ्री एस्टिमेट ले कांटेक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293 416-902-9293। नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपनेयां नूं पूरा करनगे। SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घा लगवाना चाहुंदे हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहुंदे हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984 437-655-1984।
3: थैंक यू सो मच जी। 905-673-3337 जुड़े हो पंजाबी लहरां दे नाल। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू। मैनूं एक वीर दा मैसेज आया, कहिंदे वीरे मैं शायर तो नहीं, जब से देखा तुम्हें शायरी आ गई। क्या बात है। 905-673-3337 905-673-3337 दे जुड़े हुए हो और गाना भी सुनना बनता आ। शायर दी जदों गल करदे आपां, अजकल क्यों नहीं लिखते आपां शायर? जिवें चलो सौरभ रतन जी ने बहुत सोहना कहा कि असीं एहसास कितना कितने साडा घटदा जा रहा। तुसीं लिखते हो यार, लिख के तो देखो। अच्छा तुसी अपने आप नूं झंझोड़ोगे ना, अंदर एक थोड़े शायर बैठा उन्हों हिलाओ माड़ा मोटा, टाइम दी कॉफी कॉफी पिलाओ, उठूगा, उन्हें लिख लेना है, कोशिश करो। वीकेंड दी शुरुआत हो चुकी है, लॉन्ग वीकेंड दी। अपने सोने नूं, अपने प्यारे नूं, अपने महबूब नूं, अपने सज्जन नूं लिखो दो लाइनां, अंदरों कढ़ो, अपने शायर नूं कहो कि उठ बई अपने वास्ते लिखो। पर जरूरी नहीं, तुसी अपने माँ बाप बारे भी लिख सकते हो, अपने भैणां भरावां बारे भी लिख सकते हो। बस शायर नूं उठाउण दी गल आ, लिखना जरूरी आ, क्योंकि लिखण नाल थोड़े अहसास जिंदा होणगे ते एक चंगे इंसान दी, ज्यौंदे जागदे इंसान दी निशानी आ कि उहदे अहसास जिंदा होण। 905-673-3337 माफ करना रणजीत सिंह सदी ओरा। एनी वे बाई जी, थोड़ा नाम मैंने पढ़ने बड़ी दिक्कत आ रही है। बाई रणजीत सिंह होना वालों फरमाइश की थी ये सॉन्ग दी।
4: नशा तो नहीं,

क्या बात है यार, 905-673 37 यार। यार शायरां नूं समझना बड़ा मुश्किल आ। शायरां दी जिहड़ी मैनूं लगदा कि इहनां दी जिहड़ी किस्म आ ना उह वक्री आ। बड़े नाजुक होंदे ने, बड़े कोमल होंदे ने, बड़े सुहिरद होंदे ने, ते इंसान बहुत प्यारे होंदे ने। थोड़े च कोई लिखदा, कोई शायर हैगा तां दस्सिओ यार, 905-673-33-37। ऐसे प्यारे इंसानां नाल गल्लबात करन

सो 905-673-7905-673-337 और फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत है जी। अज उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ दी कला दे विच होंगे। अज दे खूबसूरत दिन तुम इंजॉय कर रहे होंगे।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
2: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao na nu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
2: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद.
2: I love it.
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज.
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530. नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स. प्रमोट योर बिजनेस विद अस. कॉन्टैक्ट 416-518-3200.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.

आज खूबसूरत शहर का खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसीं चलदे रहोगे। तो इसी उम्मीद नाल एक बार फिर तो कि अज का दिन बहुत खूबसूरत चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर है। तो अज के दिन के भी असी यह तय करना कि असी किन्नी किसी लिए ईरखा किसी लिए मतभेद किसी लिए उन्हों नीवा उच्चा दिखाने की कोशिश करनी है कि अपने आप के उपर आप अज फोकस होकर चलना। दैट्स ऑल अबाउट द डे। तो तुसी अपना दिन किवें बजा रहे हो ये तुहाडे ते डिपेंड करेगा। तो तुसी अज दे इस पॉजिटिविटी भरे हुए शो दे विच हमेशा शामिल होंगे हो। मैं अमनदीप सिंह बैनीपाल, बहुत सारे लोग नमें जिहड़े सानूं सुन रहे हैं, तकरीबन डेढ़ दहाके तो 15 साल प्लस तो ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर के मैं जो रेडियो काम कर रहा है और सारे के रूबरू हो रहा हर रोज़ प्राइम टाइम के और सैटरडे बिजीएसट टाइम जिस 10 बजे तो लैके 1 बजे तक लगातार 3 घंटे सुनते हो भी शामिल होंगे हो। स्टूडियो का नंबर हमेशा इतना 9056673337। मेरे नाल किसी ने कॉन्टैक्ट करना, अपना बिजनेस प्रमोट करना, देर आर टनस ऑफ कॉल्स मैनू थोड़े आते हैं, तुसी जरूर अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए प्राइम टाइम रश आवर तुसी साढ़े नाल 416-518-3200 416-518-3200 ते गलबात कर सकते हो।

0: रात हमें छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है फ्रीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने बतेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878 बम्बा गया मैं जिते जावां मुंडे कहंदे बम्बा गया नोबेल फ्रेश फूड्स शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड्स 29

0: थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम पंजाबी विरसा। मैनू ना विधि जी, मेरा एक दिल कीता गीत ना मेरे सामने आ गया।
1: अच्छा,
0: मैं हुण परमिशन लेने जाना सारिआं कोलों, सिर्फ 5 कॉज कि मैं गीत अपनी मर्जी दा लादा पहला सवेरे सवेरे।
1: ला लो परमिशन,
0: 5 कॉज सिर्फ,
1: एक मेरे तो ही ला लो, 4 ला लो कॉज।
0: तुहाडी कॉल की है, लादा
1: लादा
0: नहीं ढिले नहीं बोलना, इदां नहीं कम
1: ला दो, बिल्कुल लाओ, अज फ्राइडे है,
0: अज फ्राइडे। एक गीत मेरा पसंद आया वैसे, जे तुसीं कहो सारे जणे देखो, नहीं तो मैं उही लादा, मैं सिर्फ तुहाडी, सिर्फ वेट तुहाडी कर रहा, मैनूं 5 कॉल सिर्फ चाहीदियां कि हरजीत जी अपनी मर्जी दा गीत ला दिओ, ठीक है? जे तुसीं कहोगे यस और नो, 905-673-3337, 905-673-3337। हैलो हैलो हैलो जी, भाजी लो पहली गाली गई, नेक्स्ट कॉल। हैलो
2: हैलो,
0: हां जी भाजी,
2: हां जी भाई साहब, दूजी कॉल मेरी
0: ला दा सर,
2: ला दो,
0: थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट कॉल। हैलो
3: यंग ब्रो,
0: यस सर,
3: योर चॉइस ऑलवेज लवली चॉइस, आई नो, पुट इट योर चॉइस टुडे,
0: थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वन। हैलो
3: ला दा सर,
0: ला दिए जी,
3: थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट,
0: थैंक यू वेरी मच। 905-673-3337, एक लाइन मेरी खाली है, किनिया कॉल हो गए, 5 तो हो गई है, तो नहीं चार हुई है, चार हुई है,
1: तीन चार हुई है,
0: चार तो मैं आंसर की थी, पंजवीं तुहाडी होगी, एक कॉल होर ले लेने हैं। ते 905-673-3337 सिर्फ मेरी, कई बार मेरा भी दिल करता हुंदा यार गीत ला देवां ना, 905-673-3337, एक कॉल जे होर आ गई राइट वे ते गीत राइट वे क्लिक हो जाना, 905-673-3337 स्टूडियो दा नंबर है। ये गीत बड़ा वधिया और सवेरे सवेरे गीत सुन के तुहानू चंगा भी लगूगा, ते मेरा तो मूड करदा सी ये गीत ला देवां सवेरे सवेरे, पर मेरा दूजे पासे भी हुंदा कि मन्नी भी चाहीदी है ना सारिआं दी, कितें जिहड़े बाकी नाराज ना हो जाण सारे जणे भी हरजीत जी तुसीं अपनी मर्जी क्यों कर रहे हैं। 905-673-3337 लो जी, लो लै आ भी गए, 5 गल्लां हो गईआं, चक्को आ लाओ गीत फिर। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਇਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਹੈਲੋ,
4: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
0: ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਸੀਂ,
4: ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ,
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਢਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,
4: ਬਸ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਜੀਵ ਹੈ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ
5: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਗਾ ਦੋ ਜੀ, ਲਗਾ ਦੋ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਵਿਦ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀ ਸ਼ੋਅ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: मिल जाएंगिया बिल्कुल मिल जाएंगिया दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो कि टिकटा कदों दिया चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32, 55, 80 हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828 अठाई अठाई

0: शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज दे सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
1: कंडीशंस अप्लाई।
2: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप। 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
3: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
4: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world

0: बिल्कुल जी, एक बार फिर साढ़े सारे लिसनर्स का बहुत बहुत जरा जी स्वागत है। और बहुत ही प्यारा जरा जी तुसी गीत सुन के होके हटे हाँ, क्योंकि तुसी सोचना है कि ये थोड़ा जहा चेंज देवदत्ता जी के शो के किदा हो गया। बिल्कुल जी, क्योंकि वो अपने ढंग ना जरा जी रेडियो प्रोग्राम पेश करते हैं, साडा अपना जरा जी अंदाज है। सो असी जरा जी अपने अंदाज के कोशिश करी दी है, क्योंकि अज वो स्टूडियो के नहीं पहुँच पाए, तो असं सोचते हैं कि अपने अंदाज ना कि उन्होंने रेडियो प्रोग्राम जरा जी पेश किया जाए। और नाल दी नाल जरा जी दस दिए कि अज का प्रोग्राम जरा जी असं जशन टेन के सहयोग में भी पेश कर रहे हैं। तुम जरा जी विवाह शादिया के लिए या कोई उदा छोटा मोटा प्रोग्राम हैगा या दिन के लिए हफ्ते के लिए जो तुम कोई टेंट दिया सर्विसिज लैनिया है तो गलबात जशन टेंट के नाल कर सकते हैं। इन्हों को बहुत तरीके से जड़े जी टेंट्स अवेलेबल है, चाहे तुम फ्रेम टेंट लैने आ, भावें जड़े जी हाई पीक जड़े जी उपर चढ़ के बने होंगे वह लैने आ, तुम क्लीयर टेंट लैने आ या पॉपअप टेंट्स, या तुम कुर्सियां टेबल चेयरस कुछ भी या पोर्टेबल वॉशरूम्स करने हो रेंट तो गलबात इन्हों हो सकती है। और घर के बाहर जो तुम लाइटनिंग्स या लड़िया भी लगवाया तो उन्होंने सेम नंबर से हो सकती है गलबात 416-294-2857 से गलबात हो सकती है, 416-294-2857 से गलबात हो सकती है। और नाल दी नाल जड़ा है जी दस दिए कि साड़ी टीम भी रियल स्टेट का जड़ा जी काम करती हैगी, साढ़े कोल बहुत सारिया एक्सकलूसिव जड़ी जी प्रॉपर्टीज आई हुई हैं जिद विच कि गैस स्टेशन हैगे आ, और नाल दी नाल साढ़े कोल कुछ जड़े जी प्लाजे भी इस टाइम आए हुए हैं। जो तुम यूनिट अपनी परचेज करना चाहते हैं या तुम जड़े जी लीज से लेना चाहते हैं या तुम कोई नाइगरा के प्रॉपर्टी खरीदनी मोनो के खरीदनी, साढ़े कोल बहुत वधिया जड़े जी काइंड ऑफ फार्म हाउस इस टाइम आए हुए। और नाइगरा वाली प्रॉपर्टी का मैं थोड़ा जो वेरवा होर दे दिनी हाँ कि जड़ा है जी एक कमर्शियल ते चार रेसीडेंशियल जड़िया जी यूनिट्स तुहानू मिल सकदियां, बहुत वधिया जड़ी जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैगी आ, फॉल्स तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की जड़ी जी ये दूरी ते हैगी आ, और बहुत वधिया जड़ा जी आस्किंग प्राइस भी हैगा। प्राइस रिलेटिड और देखण दे रिलेटिड जे तुसी कोई भी गलबात करनी होवे ते तुसी गलबात कर सकदे इस नंबर ते 416-881-7070 416-881-7070 ते जड़ी है जी गलबात हो सकती हैगी। और नाल दी नाल जड़ा जी ग्रैंड फर्नीचर का भी जड़ा जी मैसेज जरूर साझा कर दी, ग्रैंड फर्नीचर ते भी जड़ी है जी लोंग वीकेंड की बहुत भारी जड़ी जी सेल लग चुकी हैगी आ, तुसी जड़ा है जी इन्हां नाल गलबात कर सकदे आ 905-302-9494 ते भी जड़ी जी इन्हां दे नाल गलबात हो सकती है। और नाल दी नाल जड़ा है जी मैसेज आपां तुहानू काव्या होम केयर वालियां दा भी दे दिए कि तुसी कोई जड़े जी होम्योपैथी दा इलाज करवाउणा चाहुंदे, होम्योपैथी दी कोई दवाई लैणा चाहुंदे आ ते गलबात इन्हां दे नाल हो सकदी है 647-760-2779 ते जड़ी जी गलबात हो सकती है, 647-760-2779 ते भी इन्हां दे नाल जड़ी जी गलबात हो सकदी है। और एक छोटी जी सुनाने हैं कमर्शियल ते ओहदे बाद करदे हैं अगली गलबात।
1: इक्का जंक्शन लई 647-429-4040 केटरिंग करवानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई नो प्रॉब्लम 647-429-4040 लाइव कुकिंग करवानी है करे नो प्रॉब्लम 647-429-4040 तुसी इनारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है नो प्रॉब्लम 647-429-4040 647-429-4040 ਮੋਰਗੇਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬੀ ਸੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਏ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਲ 905-460-9099 ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ 2155B ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਨੀਅਰ ਟੋਬਰਮ ਯੂਨਿਟ 32 905-460-9099 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ
2: 40 साल हो गए अपने ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ
3: ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚਲੀਏ
2: ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
3: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
2: 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਸਰਵਿਸ
4: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ
3: ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੈਵਲ
4: ਸਰਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ
3: 905-671-8400 ਔਰ 905-796-8800 or visit giltravels.ca.

0: एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन हायर कर रहे ने क्रॉस बॉर्डर एसी ड्राइवर्स बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी डेडिकेटेड ऑटो पार्ट्स डेली होम रन्स सेम ट्रक ते ट्रेलर्स लगभग 10,000 माइल पर वीक मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कुशाबा इटोपिको अते बॉल्टन जे तुहाडी कोल भी है वैलिड एसी लाइसेंस क्लीन CBOR ते एब्स्ट्रैक्ट US बॉर्डर एलिजिबिलिटी ते फास्ट कार्ड ता आज ही एवरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नु कॉल करो 9058462229 एक्सटेंशन है 4 या फिर 9053348222 यानी 905-846-2229 ते या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4
1: ताया साडा मीट मच्छी दा बड़ा ही शौकीन आ कहंदा पार्टी विच नॉन वेज स्पेशल होना चाहिदा बस वे असी करदा फूल पंजाबी बाय

0: इंडियन फ्रूटलैंड वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
1: ले इको जगह तू किथे सारा कुछ मिलदा, दो चीजां लई एक जगह रुको, फिर अगलियां दो दी दूजी जगह रुको।
0: इंडियन फ्रूटलैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूटलैंड दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
2: मैनू ए दस कि तेरी जमात विच सब तो मेहनती विद्यार्थी केड़ा?
3: पापा मैं ही हां।
2: अच्छा ओ कदा

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सज्जरी त्रेल वर्गा तो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गबरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार नाल दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लै

0: $2,000 सेव ही नहीं करने, बल्कि नाल 29.99 भी 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर $2,500 वाला 17.99 च, वाशर भी स्टीम ड्रायर भी स्टीम फीचर दे नाल, प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर 17.99 च लैके $700 सेव नहीं करने, बल्कि 17.99 भी 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे तरह 85 इंच सोनी सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा। जे तुसी सैमसंग लेना है ते मिनी एलईडी दे नाल मिलेगा, ए भी $2,200 वाला 15.99 दा लेके 85 इंच $600 सेव करने हैं, ते 15.99 भी 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ते जदों असीं कहिंदे ना जी बॉक्सिंग वीक प्राइसिस इन जुलाई, फिर याद रखना ना अज तक तुसी कदी लिया होना है टीवी, फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद 50 इंच $299 दा, 55 इंच $399 दा, 65 इंच $599 दा, ईवन गिफ्ट भी करना है तुसी 75 इंच टीवी गिफ्ट कर दो किसी नूं भी, सिर्फ $699 च तुसी ये टीवी ले सकते हो। ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई है, दोबारा रिपीट नहीं होनी है, लास्ट डे ऑफ जुलाई टुडे है जी, ते लास्ट वीकेंड है बॉक्सिंग वीक प्राइस इन जुलाई दा। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड आना है, ते मेक श्योर करना जिथे जिथे भी साडा मैसेज सुन रहे हो
1: जी,
0: ब्रैम्पटन अपलाइंसिस डॉट कॉम साडी वैबसाइट विजिट कर लेना, या फिर टिकटॉक ते जाके ब्रैम्पटन टीवी ऐप ब्रैम्पटन टीवी AWP ऐप तुसी ओथे सानू फॉलो कर लेना, ते देख लेना ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई इस वीकेंड ते तुहानू मिल रही हैं। 905-450-2828 नंबर है जी, 905-450-2828, ते ब्रैम्पटन अपलाइंसिस डॉट कॉम साडी वैबसाइट है, ते ब्रैम्पटन टीवी ऐप टिकटॉक ते भी फॉलो कर सकते तुसी 905-450-2828 जी,
2: 905-450-2828 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
2: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡਨ ਸਪਲਾਈ ਕੈਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਹੋ, ਤੇ 5 ਚੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਮਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੱਪ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜੱਗ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ। 5 ਚੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟ ਤੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਹੱਟ, ਸਿਲਵਰ ਹੱਟ ਭਰੋਗੇ 5 ਚੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਹੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਵੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਤੇ।

0: क्लैप कर रही हूँ.
1: थैंक यू. रियली बहुत वेरी गुड.
0: हाँ जी थैंक यू जी.
1: थैंक यू थैंक यू.
0: बहुत शुक्रिया. कभी कभी मैं कोई गाना जिवें तुहानू सोहना जिहा लगे ना फिर उहदा थोड़ा थोड़ा गुणगुना लेना चाहिए. मैनू कभी कभी कोई गाना पसंद आवे मतलब पसंद तो चलो बहुत सारे गाने होंदे ने जदों कोई एकदम जे कोई गाना इहदे सामने आ जाए एक लाइन जी तुहाडे सामने आ जाए ना फिर कदी कदी वधिया लगदा. बट एनीवेज लो फिर आपां नैक्सट फरमाइशी गाना सुनीए. ये हैगे ने सिंगर शमशेर चीमा बच्चन बेदिल जी का गाना लिखा हुआ तो लो फिर आपां सुनते हैं. तो ये नोक चोक जी मेरे ख्याल च कोई गाने दे विच ते सुनते हैं आपां. तुसीं भी सुनो इंजॉय करो तो सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो.
2: हाँ मैं तेरे नाल नाराज़ हाँ.

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे ओ हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डिया बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
0: तुहाडिया कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफिंग दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, अज ही अपनी कार नूं लेके आओ। हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े, नंबर 91 हेली रोड, और होम डिपो दे नाल अज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नूं 905-857-75-96, 905-857-7596। ANJ ऑटो रिपेयर, जिहड़े कि बोल्टन अते ब्रैम्पटन दे बॉर्डर ते ने।
4: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस।
7: दिस इज AM 530 CHLO AM सर्विंग ब्रैम्पटन, मिसिसॉगा, टोरंटो, द GTA एंड द वर्ल्ड एट AM530.ca। The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: पैसे पे कर रहे हो? बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: क्या बात है, वाजी वाह, शानदार गीत। ते 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात हो रही है। गाना दसो जा दिल दे उत्ते, जिहड़ी शायरी दे विच दिल भी आंदा होवे उहदी गलबात। आपां दिल दी गल ही करनी अज्ज फ्राइडे वाली शाम, ते लौंग वीकेंड है। ते कहिंदे आ दिल दे रिश्ते किस्मत नाल बणदे ने, दिल दे रिश्ते किस्मत नाल बणदे ने, नहीं ते मुलाकातां, नहीं ते मुलाकातां ते रोज़ हजारां नाल हुंदियां। सही गल है, दिन च सानूं बंदे बहुत मिलदे आ, पर जिथे दिल मिल जाण वो रिश्ते फिर वधिया निभदे भी आ। कॉल दे बाद चलदे आ जी। सत श्री अकाल। हैलो।
1: हैलो, सत श्री अकाल जी।
0: जी सर, किवें हो?
1: बस वधिया सर। ए गुरदास मान जी दा गाना जी, 31 दिसंबर नूं आया सीगा दूरदर्शन दे उत्ते, जदों पहली वार आया सी, जित तक मैनूं याद हैगा भाई।
0: अच्छा, वाह जी वाह, तुहानूं याद है, नवे साल दे मौके ते आया सी।
1: पर
0: कमाल दी गल है, तुहानूं सन याद है केड़े सन सी कुछ?
1: हां मैनूं इन्ना याद है, मैं तुहानूं भी दस दिंदा वा, एक मिनट। मेरे ख्याल 80 या 81 दे अंदर आया सी, 80 या 81 च आया सी। उदो मैं एक छोटी जी शॉप ते जॉब करनी शुरू कीती सी।
0: अच्छा,
1: हां जी,
0: बल्ले बल्ले।
1: पूर दर्शन ते आया सी जी, है ते अगले दिन असी इस गाने उत्ते बड़ा जश्न मनाया सी इस गाने उत्ते, क्योंकि पंजाबी गाना पहली बार है गुरदास मान जी दा आया सी दूरदर्शन दे उत्ते।
0: दूरदर्शन ते 80 के 81 दे विच?
1: दूरदर्शन ते पहली वार डबली नाल उन्होंने बजाया सी गाना।
0: क्या बात है, वाह, देख लो यादा जुड़िया हुंदियां किसे ना किसे गीत नाल, के नहीं? खास करके मैनूं लगदा तुसी जी जी स्टूडियो दा नंबर 905-673-3337 अगली कॉल 86-62 जी। सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी।
0: जी सत श्री अकाल, किवें हो जी?
2: वधिया वधिया, तुसीं सुनाओ?
0: बहुत वधिया जी।
2: भाई टेस्ला टीवी दी आई सी शायद मशहूरी।
0: पक्की गल है?
2: हां जी पक्की गल
0: है। टेस्ला?
2: हां टेस्ला,
0: नहीं टेस्ला नहीं, सॉरी टेक्सला।
2: टेक्सला, हां जी टेक्सला, टेक्सला।
0: मैं देखो लो किन्ना पुराना है। मैं उही कहना टेस्ला दिमाग च चढ़ जांदी बंदे दे, टेस्ला नहीं टेक्सला।
2: हां टेक्सला, टेक्सला टीवी आई सी ते एक मशहूरी आउंदी होंदी सी उस टाइम ते, दूजी कलसी पंप दीआं,
0: कलसी पंप दीआं, मलकीत सिंह दी।
2: हां मलकीत सिंह दी, हां जी हां जी।
0: और हुण पिंडां विच गल्लां कलसी पंप दीआं। क्या बात, देख लो उस टाइम ते वी ऐड घट्टो घट 30-35 साल ते हो गए होणे ज्यादा ही, जदों मशहूरियां चलदियां सी टीवी ते गाणियां वांग आंदियां सी बण के।
2: हुण तां भाजी अग्गे नगा रहंदे, उदों तां देखी दियां सीगियां मशहूरियां वी देखी दियां सीगियां।
0: आहो उस टाइम रोक रोक के दुबारा देखी दियां सी, हुण तां हुण VCR है नहीं ना। चलो बहुत शुक्रिया वीरे, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। देखिए ला के किते वो ऐड तां नहीं इह

0: रॉयल थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।